0: मौ बाबै उही मौ न लबै
1: बाई न तबै पेरो वलांगिर मे एक्सपेक्ट उमायो के बासिन ओ मरिसमायार मे ओ मोना इन आना मगुनिस ओना गुड मा डिली दंगे यंग मींस तो उमिंगा मबदोस न सेया पेरो डिली दे आइ
0: आ सयोर न पीते रे सुल बदन बाई
1: मौ गुड मौ गुड मोह पीतर मे उनिया ने आउट न तो ओ Simbako, mumabdo si Siren bay. Ninong yuga, ha?
0: Oh, mating na bay.
1: Oh. Na-efficient bay.
2: Good morning, sir.